जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो, आदि अंते कै अवतार, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को बल मोहमत कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, टीटी ते कुंचरिया सूला, सापर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान है, कट कट की पट पट की जान है। जावद कर करा कर तारा, प्रजा तर तब देह पारा। जब या कर तुह कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ।

मूर्खस भेद न जानते। महादेव को कहत सदा सेवो, निरंकार का चिन्हत नह पेव। आप अपनी बोध जीती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केह विद सजाऊं प्रथम संसारा।

का तत् जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुह मरे पुरख जम पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पुण जाए अर्ध सहस पुण तीन कह जाए भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीरुस तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र प्रख्याने त्रिया त्रित्रय मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त सुमस्ताप जुंड।

मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा कारग सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, करता तेरा सब किश है, जिस देहें सो पावे सदा सिकत सला।

अनाद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। भुगत ज्ञान दया भंडारन खड़खड़ वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग वजोग दुकार तलाभ लेखे या मैं भाग। आदेश तसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको बेस। एका माई जुगत वे आई चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण। जिब तिस भावै तिवै चलावै जिब होवै फरमाण ओह वेखै उन्ह नदन आवै बहुत अहि विडाण। आदेश तसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको बेस। आसन लो लो भंडार जो किछ पाया सो एका बार। कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको बेस। एक दूजी बोला खो हे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा है आखी एक नाम जगदीश है। ए तराह पत पबड़िया चढ़िया हुई अकीसो सुन गल्ला आकाश कीटा आई रीसो नानक नदरी पाई कूड़ी कूड़ा ठीस। आकड़ जोड़ चुपै न जोर जोर न मंगण देर न जोर जोर न जीवन मरण है जोर जोर न राज मान मन सोर जोर न जुगती जोर न सुती ज्ञान विचारो जोर न जुगती छुट्टा संसार।

ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਦਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬਤੰਦੇ ਨਮੋਸਤ ਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤ ਅਸਤਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ
अरूप है अनूप है जू है पू है लेख है पिख है नाम है काम है ते है पे है जीत है पीत है तिरमान है नदान है तिरवर्ग है सुरग है नील है नाद है जे है जद है जन्म है वर्ण है भूत है भरण है अगंज है भाजया झूजया झांजया मीकर पीकर तंदु है बंद है निर्बूज है सूज है काल है जाल है लाह है जाह है अनंत है महंत है अलीक है नसीकरण लंभ है सम है गम है जम है भूत है सुत है अलोक है सुख है कर्म है भरम है जीत है पीत है अबाह है गाह है मान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रया छंद नमो सरमान समस्त निदाने नम देव देवे भेखी भेवे नमो काल काले नम सर्प पाले नम सर्प गौने नम सर्प पौने अनंगी अनाथ नसंगी प्रमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादि नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी प्रमाते समस्ति विभूते कलंक अंग बिना नहीं कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरंग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणी नमो अस्त्र माणी नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी भरमी भोगी भुगते नमो जोग जोगेश्वरंग परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रे देवे सो धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह नमो भू भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्त इशनान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदान सर्व परनासी अनूपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दाम बुद्ध दाम मृत करता आदो उर्द अर्दं अगंग ओ घरता परम परम परमेश्वरं पुरस्पालंग सदा सर्वदा सद्दाता दयालंग छेदी अपेदी अनामं कामं समस्त उपराजी समस्त स्थामं तेरा जोर चात्री छंदे चले है थले है पीत है पे है प्रभु है जू है दिस है पे सैंग उपजह प्रया छंद अगादे अबादे आनंदी सुपे नमस्रमाने समस्त निधाने नमस्तवंग निर्नाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग काले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साहसाजे नमो साहसाह नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोके नमो सर्व सौखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वयंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समसं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे को कर्म परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्ध निवासी चरपट छंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल त्रमंगला कर्म सर्वंग दाता सर्वंग याता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल छंद त्व प्रसाद आद रूपनाथ मुर्जन पुरख पारु सर्वान त्रमान देव पेवाद उदारु सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पुन कालु जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल

जतर ततर दिशा विशा हो फैले और रागु नाम काम विहीन पेख धम न जाए सर मान सर्वत्र मान तय मानता है। एक मूर्त नेक दर्शन किरण रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अंत को फिर एक देपे बिना जान ही जे भेद और कतेव रूप रंग न जात पासो जान के जेव तात्मात्मा जात जाकर जन्म।

आवहो संत प्यारे हो गावो सच्ची बाण आवो संत प्यारे हो अकत की करा कहानी अकत केरी केत दबाड़े पाई है।

जिन हर पल पाए, हर रास मेरी मरमण जा रहा, हर रास मेरी मरमण जा रहा, सा गुर तेरा जानी, हर हर नित जपे हो जी हो लाहा, खट्टे हो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलिया, एहो धन तिना मिलिया जिन हरिया।

जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहतुरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र

जुग जुग फेर उठाई है ज्ञान बुझेता है सतगुर संतों का त्रम गृथ आहो त्रेतर जते का जुर गृथ आहो द्वापर तप

प्रदेश रामकली राग विच गुरु अर्जन देव साहिब महाराज चार चार पौड़ियां वाले सो चौपदे शब्द बख्शिश कर रहे हैं। पंडित आया कर्मकांडी विद्वान अमृत।

घर जाहे पंडित रहाओ। और क्या ये कर्म कांड जेड़े ने वेदा विच बयान ने, आ कर्म कर लो, इहदा इन्ना फल, कर्म उपासना

अहम बुद्ध का भया विनाश ता गया सी महाराज, अहम बुद्ध दा नाश हो गया है गुरु दी संगत करके। सो अहंकार वाली मत, हम तो रहत हम मैं आदिक नाश, प्रेम वाली अवस्था बन जाती गुरु दी संगत करके, सेवा सिमरन प्रेम वाली अवस्था। दुर्मत होई सगली नाश, सारी नाश हो। राम नाम गुण गाए पंडित, कर्म कांड अहंकार न काजा, कुशल से ती कर जाहे पंडित राव। करके मारन के पंडित पूछो तो माया राते, पंडिता नु पुछदे हैं माया दे विच रंगे होए ने, अहम बुद्ध दे विच रते होए ने। राव असा ने अपना सिद्धांत दे रहे ने, गुरु दी संगत करके हर का जास निद लिया लाभ। हरि वाहिगुरु दा जस करके, वाहिगुरु दे नाम दा उच्चारण करके, उदा कीर्तन गा के निद वाहिगुरु जो खजाना